शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: तू फेर आ गया, तेनू पिछली बार कही गल याद नहीं।
1: साडा देख देख हाल, हथ जोड़ी बैठा काल, बंदे सारी ही रह।

0: नहीं देगा। अच्छे अच्छों को चूस कर गुठलियां फेंक दी है।
1: पिंड चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे पंडता खाली किदड़ बहनू रेला आउणगियां हुण नी जज जमानत दिंदा।

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: तेरे हुसन दे चर्चे

कुछ गल्ला दस सकदा कुछ दस के भी समझ नहीं आनी कुछ तेरिया ने कुछ मेरिया ने तेरा मिलना तेरा विछड़ना तू कदे परछावे तो नेड़े तू कदे सब तो दूर तेरा हासा तेरा रोना ते कदे कदे एकदम चुप होना सब कुछ जो तेरे नाल रह के निक्की निक्की चीज नू जीना सिखिया निक्कियां चीजां च खुश होना सिखिया उच्ची उच्ची हसना सिखिया दिल च की चल रहा तेरे नाल शेयर करना सिखिया हां खुशी है मैनू तो जिंदगी किदां जीनी है ए दसिया पर अफसोस तेरे बिना किदां जीनी है किते ए नहीं दसिया गल हुण संघणी धुप दी गर्मी ते रातां दी त्रेल तक है दुनिया जितन ते हारे हुए खेल तक है ए मेरी खुद दी बनाई दुनिया जिदा एक हिस्सा बना के थोड़े हिस्से कर लग्या विद माई फर्स्ट ईपी एडिक्शन।

0: देखे तो दो चुपेरा मान लिखे चुके थे बट तक तेरे बूथे थे तू हुण करे आ
1: या अल्लाह भी मता आ गया
0: तेनू तां हुण लव दिखाऊंगी
2: बापू रोवे मच गई फसल कुड़े पांच छे किले नाल चाचे दे सानू चप्पला हुण तक जुड़िया नहीं कित्थों लईए बैग वरसाचे दे सुपने भी आउण सलाबे नहीं साढ़े घर दियां छत्तां कच्चियां ने करजे विच डुबे हरफ दियां जो तू सुनिया गल्लां सच्चियां ने जो तू सुनिया गल्लां सच्चियां ने।

0: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।
1: स्नाइपर
2: वेखी किते सोह खा

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, इटोबिको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: की तुसी अपने घर विचले IPTV बॉक्स दे पूरे विश्व भर दे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मद्रासी, तमिल, पाकिस्तानी चैनल, फिल्मां, सीरियल, ड्रामे, न्यूज, बच्चा दे चैनल अनबीटेबल कीमत दे देखना चाहते हो तां भारी बचत लई अज ही कॉल करो 6475545859 647-545-5859।
2: This is CJMRAM operating on 1320 kilohertz from Mississauga, Ontario. We are currently conducting a technical test under authorization from Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED. If you are experiencing interference with your radio or television reception, please contact us at 416-303-1515 or report it via email at chavlanewsnetwork@gmail.com. Thank you for your patience.
3: Shahar di awaz, dilan di pukar. Your city, your voice, your radio star. Aagya fir to ek var. Tuhada apna CJMR 1320.
1: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इत्थों तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अप्लायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। नंबर 905-799-0045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स।
4: वाह गिल साहब, ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी, उपरों एनी सारी एनर्जी, ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है?
5: ओ यार काव्या, होमो केयर, होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ।
6: जेकर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो। बीमारी पावे कोई भी होवे, कॉल करो
7: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन।
8: घर होवे या ऑफिस, ड्राइववे या पार्किंग लॉट्स, शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट, पाथवेज पेविंग ले परफेक्ट है कैलिडन पेविंग।
9: एक्सेस रैंप्स, एक्सकावेशन, ग्रेडिंग, रीसर्फेसिंग, ओवरले फार्म, ड्राइववे पेविंग, ये सब कर देने। आज ही कांटेक्ट करो जसबल नु, इट्स 416-818-8900
8: और विजिट www.calidonpaving.com।
10: ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ।
11: ਓ ਜੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ।
12: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਂਟ, ਟੇਬਲ, ਚੇਅਰ, LED ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ, ਫਲਾਵਰ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ, 360 ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਟ੍ਰੈਕਟਿਵ ਟੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ।
11: ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ 6477080079 6477080079।

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: जीना जा मरना इंसान दे हाथ नहीं, परंतु इस संसार तो तुर गए प्राणी दा उस दियां धार्मिक रौ रीतां दे नाल उस नू विदा करना साडे वस है। अपनी संस्कृति अपनी धार्मिक रौ रीतां मुताबक अंतम रस्मां वेले याद रखो, रैक्सडेल दे विच लोटस फ्यूनरल होम जिथे अंतम दर्शना तो लैके दाह संस्कार दियां रस्मां इको ही छत थले हुंदियां हन। लोटस फ्यूनरल होम दा सारा स्टाफ तुहाडी भाषा पंजाबी हिंदी भी बोलदा है। वधेरे जानकारी लई कॉल करो सरदार हरमिंदर सिंह हंसी 647-547-8188 6475478188 Lotus Funeral Home।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बम रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 416-213-65
1: हाय मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे मेरी निक्की भैन दा व्याह मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी
2: क्यों नहीं चन करे कहे ता सिर तो पैर तक सोने च बढ़ा देया
1: ठीक है जी चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने सेट रानीहार छापा मुंदरियां छल्ले बिस्कुट चेनियां वंगा कोके टिक्के कड़े ब्रेसलेट मंगलसूत्र सब कुछ प्योर ते यूनिक
2: हां नाले मैं साड़ी दियां बाहां भी तां बिंगियां करनियां ने 12 चूड़ियां ओनु भी ले दांगे
1: तो मेरे जीजू ली घड़ी
2: आहो अशोक ज्वेलर कोले रेड ओदियां रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने
1: चलो फिर छेती चलो अशोक ज्वेलर 719 एयर रोड मालचंद इन अशोक प्लाजा फोन नंबर है 9056714290

0: लव साउथ से केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डिजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca।
1: लव साउथ।
2: ओ हेलो यार, मेरा भी लोड ले जी, ट्रक फिर खड़ गया यार।
3: ओ भरावा, हैप्पी बडियाल ते सुखा टेसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा।
2: सच्ची?
3: ओ मुच्ची,
2: फेयर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बडियाल ते सुखा टेसी, जो के इंजन रीबिल्ड, ट्रांसमिशन रीबिल्ड, रिपेयर, डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ए टू जेड सर्विस करके देंगे।
3: इना कोला सालना दा तजुर्बा।
2: हुन एड्रेस भी लिखा।
3: ले लिख ला, 1 गुड मार्क प्लेस, इटोबिकोक, यूनिट 5।
2: कॉल 647-70
4: ਵਾਈ ਸਫਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ ਆਰ ਕਾਰਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਓ ਸੀ ਆਈ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇਨਸੋਰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਲੋ ਕਠਾਰੀਆ ਟੂਰਸ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ 2883 ਡੈਡ ਰੋਡ ਐਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ 4550 ਈਵਨਜ਼ ਰੋਡ ਜੂਨ 12 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਔਰ ਕਾਲ ਅਵਤਾਰ ਕਠਾਰੀਆ 9056781200 9056781200 ਕਠਾਰੀਆ ਟੂਰਸ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ
5: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
6: HK Movers,
5: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
6: For service with a smile, give us a call.
5: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
6: 416-524-6704.
5: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
7: Long distance moving specialist,
5: HK Movers.
8: HK Movers.
9: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320.
10: CJMR 1320.
9: The voice of the city.

0: जाएगा।
1: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार। आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320। CJMR 1320।

0: कभी हो।
1: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.
1: तेरे जैसा किसी ने कहीं आज तक कोई देखा नहीं, तुझको पा लेने की अब किसी हाथ में कोई रेखा नहीं। तेरी आंखों का साहिल ही तो मेरी मंजिल है, तू मिल न मिल। तेरे होठों का तिल मुस्तकिल दिल का कातिल है, तू मिल न मिल। सारी दुनिया इसी सोच में ही मगन है कि तू कौन है, शाहजादियों को भी तुझसे जलन है कि तू कौन है।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: नुड़करो के कैलेडन सब्जी फार्म तो तुसी हर तरह दी ग्रोसरी, इंडियन स्टाइल कईयां दातियां, रंबे, खुरपे, तंगलियां, फोल्डिंग बेड, नवारी पलंग, मूड़े, कुर्सियां, टेबल, पारे थले वाले हर तरह दे हर साइज दे बर्तन तो इलावा ग्रोसरी ते ढेर सारी सेविंग कर सकदे हो। साग बनया बनाया भी मिलदा है, जिन्ना मर्जी लाओ या घर लिया के साग तुसी खुद बनाना है तो कैलेडन सब्जी फार्म ते आओ। 1250 एयरपोर्ट रोड एट मेफील्ड। जानकारी लई कॉल करो 905 840-9000। कैलेडन सब्जी फार्म।

0: कपड़ा जो भी पार पार के लाउना वे मनाना कर मन आईया एक दिन पैना ही पछताउना।
1: शहर दी आवाज दिलां दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की किसी भी लोकेशन पर आइए और गणपति पूजा के लिए मोदक ले जाइए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अगर तुसी खेतां विच कम करके ढेर सारे डेली डालर कमाउणा चाहुंदे हो तां इह सूचना तुहाडे लई है। संपर्क करो अजैब सिंह सहोता जो मिल्टन कैलडन ब्रैम्पटन माल्टन मिसिसागा विचों घरों पिकअप करदे हन ते वापसी ते पेमेंट डेली भी तुसी लै सकदे हो। 7 days कम। वधेरे जानकारी लई कॉल करो अजैब सिंह सहोता 416-561-8882 416-561-8882।
3: ग्रेट फर्नीचर दा ए मैसेज जरा ध्यान नाल सुनो। सस्ता

0: open 7 days a week. Located at 1850 Albion Road, Etobicoke.
1: Three locations to serve you.
2: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स इत्थों तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन फ्रिज स्टोव डिशवाशर लॉन्ड्री ली वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अप्लायंसेस लगवाना चाहुंदे हो डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन नंबर 905-799-0045 9057990045 Top Choice Electronics